कुलराम भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीरामदूत हनुमन् यदुनाथ दास श्रीभीमसेन वररौच पुरावतार श्रीव्यास हृत्प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्रीमध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोषपूर्णी जातोऽपि भक्तिभरितो भुवनम् समस्तम् योऽपि पवोदिविशदाम्बरशङ्कः।

भूमान वयोद्भव समस्त सुराज मौले भूभार संहरण तोषित कृष्ण मूर्ते बाह्रीक राज बहुराज सुधर्म धावन श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्री कृष्ण देव नृपतिः सकलं स्वराज्यम् यस्मै स्वमप्यमलयार्पयदात्मभक्त्या श्री व्यासराज विदुषांवर दिव्यमूर्ते श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्री मूल राम पद पंकज लोल भृंग श्री पूर्ण बोध मत रम्य सुधाब्धि चंद्र श्री गौतमान्वय विभासक भव्य सूर्य श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्वीयान् समस्त निगमान्

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुल तिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्य वर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्यवर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टिकलापारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्रकिरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्हंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगव समलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यति कुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्षष्टि कला पारंगत दुर्वादिमत्तेव पंचानन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्वैदिक सद्वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य नास्तिक कुलतिमिर सहस्र किरण आस्तिक दर्शन महाचार्य श्रीमद्धंसनामक परमात्म ज्ञानपीठाध्यक्ष श्रीमन मध्वाचार्य मूल संस्थानाधीश्वर श्रीमद् कवींद्रयति पुंगवसमलंकृत दक्षिणादिपीठाधीश्वर निखिल भूमंडलाचार्यवर्य सकल यतिकुलतिलक निखिल कर्मंदि वंद्य पदाब्ज सत्संप्रदाय प्रवर्तक सनातन धर्म संरक्षण दुरंधर श्री भागवताग्रेसर जगन्मान्य जगद्गुरु श्रीमद् विजयेन्द्र तीर्थ करकमल संजात श्रीमद् सुधींद्र तीर्थ वरकुमार राजाधिराज संसेव्य पादकंज श्रीमद् राजाधिराज श्रीमद् राघवेन्द्र तीर्थ गुरु सार्वभौम जय जय पराक् स्वामीन् पराक् बहु पराक्।